0: ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯏ 지금 마침 자체 렌즈 잠바니나 고 가만히 삐져가다 찡어냐 삐져래 야다 마북탄방아 뭐다와 싹세 떨어가 야암나 아와와 탱네 아조보디 로이나 농아이보디 나티 하이디 농아이보 우러가 해 농아이바 렌즈나 콰이디 농아리체 42-45 की देश है सी मतम सी ने को जीएन जी ने खाई देगी कोई की पीरम में से कोई ना जीएन मतलब सुनो आई बा देगी मुई की मसाज फजन ना उरको मतम को मसे की बिसे जीएन जी संदक ती मांगे तो को की दका खन बसे असे खंग दे करी वा खनु खंग दे तो होना निंगा पदो आदु आदु मांगे की तो खरे खरे चम चम सोलो को हाई दारे को नुपी मना पैसा तानबा सिदा इकाइबा अदेगी अमा मगी लई फुंदो खरागा आइगी दगा लई से इचा छेंबा ओर पैसा
1: तानबा
0: होय न पिंगी मथौ से को इचा मुसुंग पैसा अनि जे आइदी आइगी इमुंग याना सु सतबा यादे आइदी इशाय वा सु छेम दव जाते अदोगा आइगी नो पाना पोरो पखक सागा ने नंगाई लई सु जाते
1: होय
0: अदो माइने खल्लगा लई रे इनि जे
1: होय याम जुनु आइ ताबदा अदोगा गसागी येन से खोगी वैरायटी मे अमम लईबसे ब्रॉयलर द सुकरम वैरायटी ओइदोइनो इचे महिना होजे लोइबिरिसे
0: अखैना होजे होजे पाइसे गणपति नामा पाइरे अमना सिंगममन अमग पाइबको अनिसे आइ होजे होजे पाइरे
1: अदुगो येनगी हेक पुरकपदगी योब थाकप दुमागी सेबा मे अमम तरपदगी होरगा योलम दाइ थादोम दाइ सिबोगी हाइरे कमाइना कमदौना मखोगी दि ब्रॉयलर गी दि आम चेकसिनना दगी लुनाना सेनबिदव यादि हाइबम सुताइ खैना अदुन कमाइना तवय दुगी मोंग सिदेम तंगवारी लिबियो
0: तसे अंगोगी दि इचा सेनबदगी बोइला सेनन हेनवाय आइ जादो दि आइरे माइगी आराम मतन द पिजेर लोरेबा अदे मादिंग सगी मखोंग सोलिब्रा देगी करी वाली है ना जिंगजन बचे आईडी इंगातंग का कोई ना इमाने भी मियां कोई ना सी दी कोई कायुम मम्मले गान सरू बचे कोक से अदूम तो थाजन दबा चाहे जीएन दले हो वही तारे वो खंजे इमाने भी मियां की वाली दो ताद भी दम असमा तो कई दोरों नुम चिचिल कदरा ऐ नुम सुर कदरा आईडी इंगासाई की माजे कई दोरों माफम दो दर लेरा कांड जंगल लगा आई पेंजर वो इन तो बहाय दारे को आदो मायना ठेंगने ये खोगे आवाब दे ठेंगना तब में ते आदो का जेंसी लोगों को मतम दा कोई मरो इन जनाऊ से अपहवा मसंगे को जनाऊ से खोगे मने पुरुष द दी शिंग ना है के खोगे जनाऊ से ना दरकाले से पुंग कुमारी ने मौन है ओन बदेगी मशीन हाई दी माई पुंग हेन बगे खुदक तथी शीरो एवं मसिंजाक सारा सारा का शीर कने एवं अदुना मापू तथी मागी प्रॉफिट की चांग ही ले रहा रोय बहुत फज़र रहा रोय आलो हुजी हुजी मक्सु एमों द तो एवं मरम दे हुजी मने पुगी सीधा जनाओ पुछला पजे लंबी यादा बनी
1: ना
0: माने पल्ले ले गए आ अदु की द मक्त खरमांग मिन नरासी अदु माय दम हायरमे मरम दिखाय गनु हायब मतम द मोज मोय तोनि तो गन ते दन अदु अवाब थेन न दबति नते लोय थेन नै अदु मायोक नर कान द खान कला कान द खै गि लंबी दु फंगबाय वानि को दुगा जेंसे लोय ब मतम द खै चेक छन बेगा दबति मै इसिंग को 이신 까마이 피타카니 이신제 거기 쇠 쇼우가 피타고 해야 되잖아 아힝다 마이 먹기 따라가디 뭐기디 콰이데기 구동 티버니 아마 마이시기 파자바마 상에 아이디 나리테나 자톡자친 떨어다 오는 더바 타와이시 그땅 옥션을 놓이바 마상에 타와이 하자냐 자우드라가디 포르포디모 퍼자디 아도 마이나 아이나 하이닝에 거 타와이 야우나 놓이비요 거 아데기 파샤지디 가멘 롭스 파샤 아시데슈 파샤 마네 마야우나 하이네 아스낭나 지엘로로 퍼제 쿠이만가레 하이바자우리니 거 아이노 비니나 거
1: 저히니 푸 무헬라 아마니
0: 사이니 푸헬레 제로레제 아도 와 얌사 토나미 도나 박샤나 또 방감드라고수 사기 아이기 그땅 톡서바 하이다레 거 비모 bagi akoi na eh jom mama da sang de ada ba pesha khale di da kali da na
1: mane mane
0: ado da kali ba to matien tong na ba to ado maina aina haide haining e ko ado ga phongsu phange mang su mang e
1: mane
0: mang ba chu
1: hoi hoi
0: ti de phang ba ju harau de
1: mane business to why was mo bu aka akum ni amu su hek tong ni amu se mang ni tawri ni ko ado sa iche mana so hai bi rakpa wakhal ya so thaba matam da koi thok pa chali kai na hai bi ba do aidi akoi ni covid ki matam irangi matam ma ma su theng na gre ko myam se da gi mo bird flu gum la ko matam do su dum pak tak na nasi su myam yawe ado iche ma di che hini phu he na si gi sin pham si da lai bi rakpa ni na du gum ba nuai ta ba ma ma ma si di yam he na ma yam na theng na ri si da gi he na theng na ra ma doi ne ba ko ado na kamai na di taw iche ma hai di pukning wakhal son thara pa dang sa iche ma da bu di hai ধরা গলে বিয়া দেহে না লিসিং মাঙ্গা জু লিসিং আনি ভাব কানি না থৌনা হাপি হাইবি বদো আদে মতান তো সুকিতং তাজানি নি এদুগা তৌরি বাইচে মনা চহি তারা তরুক তো ইউম পালাগা আদু দগি পেসা তান দা বিয়া দে হাইদনা পুকনি ওয়াকল চে চাপ ইউ না লেপ হনা বিরা কোদো কে হাই তারে মতম দু ইচা সু লেরে হাইবি আদু মিয়াম দো কমাইন স্ট্রাগল তো রে এ দে ইপুরই বনা সু ইয়াম চাও না সাপোর্ট তো বিরম গদব সু মালি গসি ফৌগি লাই বলম্বি সি দে সয় দনা মকে তরং গনি হাই মথা জে আদু না আদু কি ওয়ে ওয়ারি সিং দো মতম মতং মতং লিভ ইউ
0: yam nong si wa yin da ai na sa ye kone thoi je mi oi binu pi je taga taga te ba matam ne wari ne ko matam da ai na jen se loi ba di lai ko tha dok pa chi ne yam lo
1: ma ne market
0: jen se market se manipur di khawai ba ko aga ai na market se kamai to je ga ha ga na ai yam nong si ba anga nga ma amana nepali ma sa ne kangla tom bi dai ne ko amana susam moirang ma sa ne susam po da ada moi ani se aina hana bodi akhoi sai da loken da torome adegi je lising ani lising ama phal ro pa da gi lising ani lo ro pa da gi di su sam po gi angang se kai di mai gi momo sa ko ko amana kamal ko we moi ani se ai gi po se moi da tha doi ni ai gi po se moi da tha ba ma tam da ai cha mo se su sam po sang ni ma yam na hai ma tam da nang na ha wa na su sam po sang ni do ai ni ma tam gi phat da ba jin na phat da ho era la po ya hai ai na kan ba di ki lambi do aidi aina udoi che kanano moi ani khatani atopa ai ude ai ngasi bo koina sangai se ai sagla samai chu jam ba thate moi bhang goi banata ba ai matam lai taba maram de ai sa iskon hala mani haiba ai aidi aina moi de hingchap sa toini ko jen je thagra ni hingchap la ka doini ari hingchap se khoi to minara ni dai bo phaju moi ki dukan de loi no bus parking ma ya da oi ba mo da ai bus da la ani aduga ai dum sida paisa de pora kan da akhoi asam nong si ba nongai ba akhoi gi chu jam pu se ᱛᱚᱵᱚ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱱᱩᱝᱟᱭᱛᱨᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱭᱫᱤ ᱢᱚᱭᱡᱮ ᱱᱟᱯᱟᱠ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱟᱵᱟᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝᱞᱩ ᱠᱤ ᱤᱨᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱟᱵᱟᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱛᱚ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱩᱡᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱤᱫᱮ ᱫᱤ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱵᱟᱡᱟᱫᱤ ᱡᱤᱱ ᱜᱤ ᱯᱟᱥᱟ ᱡᱟᱫᱤ ᱟᱫᱚᱢ ᱞᱤᱥᱤᱝ ᱪᱟᱯᱤ ᱟᱝᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱠᱚ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱱᱮ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱱᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱᱤ ᱦᱟᱭᱫᱤ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱜᱟᱝᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱵᱤᱵᱤᱨᱚ ᱠᱚᱥᱮ ᱟᱥᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱮᱱᱫᱚᱝ ᱱᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱨᱚᱠᱵᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱜ ᱟᱢᱚᱜᱟ ᱯᱤᱨᱚᱠᱵᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱞᱟᱱᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱠᱚ ᱟᱥᱱᱟᱝ ᱟᱭᱱᱟ ᱟᱭᱡᱮ ᱠᱷᱟᱭᱫᱟ ᱦᱚᱣᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱞᱮᱭᱨᱚ ᱨᱚᱜᱟ ᱯᱩᱪᱷᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱮᱭᱨᱚ ᱠᱷᱤᱵᱟ ᱚᱣᱟᱨᱤᱱᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱫᱤ ᱱᱩᱝᱟᱭ ᱵᱚᱫᱚ ᱟᱫᱟ ᱟᱭᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱮᱵᱟ ᱥᱩᱱᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱭ ᱛᱚᱞᱚᱵ ᱫᱚ ᱟᱭᱱᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱦᱮᱱ ᱢᱟᱢᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱟᱭᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱟᱭᱱᱟ ᱱᱩᱠᱱᱮ ᱭᱮᱵᱚ ᱠᱚ ᱟᱭᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝᱜᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱠᱩᱱ ᱛᱷᱟ ᱡᱚ ᱡᱚᱜᱫᱨᱤ ᱟᱭᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱟᱱᱮ 45 ᱫᱮᱥ ᱵᱟ 50 ᱦᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱥᱤᱫᱟᱭ ᱫᱟ ᱟᱭᱫᱤ ᱥᱚᱢᱟᱭᱱ ᱯᱷᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱭ ᱟᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱦᱮᱱᱟ ᱥᱟᱵᱚ ᱛᱚᱠ ᱥᱟᱞᱚ ᱯᱚᱫ ᱞᱟᱭᱫᱤ ᱢᱟᱭ ᱛᱷᱟᱵᱚᱠ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱢᱟᱡ ᱤᱥᱠᱩᱱ ᱫᱮᱜᱤ ᱡᱮᱱᱫᱚ ᱱᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱫᱨᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱚ ᱠᱩᱫᱚ ᱠᱷᱚᱭ ᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱟᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱥᱟᱵᱚ ᱛᱚ ᱵᱤᱨᱟᱜᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱠᱩᱱ ᱛᱷᱟ ᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱥᱟᱢᱯᱩᱨ ᱛᱟᱨᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱯᱩᱞ ᱞᱮ ᱢᱟᱜᱟ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱜᱷᱟᱛᱤ ᱫᱮ ᱞᱟᱭ ᱮᱠᱚᱝ ᱛᱚ ᱤᱱᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱣ ᱥᱮᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱞᱚ ᱦᱩᱡᱤ ᱥᱤᱝᱜᱚᱢ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱩᱝ ᱛᱷᱟᱫᱟᱨ ᱮᱭᱱᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱭᱫᱤ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱭ ᱛᱚᱨᱟᱜᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱥᱮᱫᱤ ᱪᱩᱥᱟᱢᱯᱩᱨ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱢ ᱯᱷᱟᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭ ᱠᱩᱱ ᱛᱷᱟ ᱛᱚᱨᱮ
1: ᱦᱚᱭ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱪᱮ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱥᱮ ᱢᱟᱯᱷᱟᱢ ᱡᱮ ᱟᱫᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱝ ᱵᱟ ᱭᱟᱫᱨᱟᱵᱟᱱᱤᱱᱟ
0: ᱦᱩᱡᱤᱠ
1: ᱥᱮᱫᱤ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱟᱣᱟᱵ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱮᱝ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮ ᱠᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚᱨᱮ ᱦᱩᱡᱤᱠ ᱥᱮ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅꯤꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯤ ꯉꯥ ꯆꯥꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯦꯟ ꯆꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛꯇ ꯉꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯖꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯐꯖꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯖꯦꯟ ꯀꯦ ꯖꯤ 1,000 ꯀꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯖꯦꯟ ꯀꯦ ꯖꯤ ꯉꯁꯤ 50 ꯀꯛꯑꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀꯛꯑꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯕꯔꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯦꯟ ꯀꯦ ꯖꯤ 700 ꯁꯨꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯋꯥꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯋꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗꯦ
1: ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯡꯗꯣꯔꯤ
0: ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯕꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯆꯦ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛꯊꯥꯎꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯆꯦꯃꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯆꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯀꯣꯔꯐꯨ ꯑꯆꯧꯕꯗꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛ ꯖꯨꯅꯦꯇꯤꯟꯒꯤꯗ ꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯖꯕꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ
0: ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯅꯦꯇꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛ ꯕꯦꯒ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯤꯀ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯪꯖꯥꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗꯕꯩ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛꯁꯤꯒ ꯆꯦꯡꯀꯨꯞꯁꯤꯒ ꯌꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯀꯣꯔꯐꯨꯁꯦ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯩꯗꯣꯛꯑꯦꯗꯅ ꯍꯩꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯠꯀꯗꯣꯏꯕ
1: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯦꯡ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯄꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯆꯦꯡꯁꯦ ꯇꯣꯠꯂꯦꯗꯅ ꯇꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯅꯞꯇꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯅꯞꯄꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯟꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯍꯤꯡꯉꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯆꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗꯗꯅ ꯉꯧ ꯉꯧ ꯂꯥꯎ ꯂꯩꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤꯅ
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
0: ꯆꯥꯗꯤ ꯆꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯇꯨꯗꯤ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯌꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯈꯠꯂꯒ ꯌꯦꯟ ꯆꯤꯡꯂꯣ ꯆꯤꯡꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯜꯂꯣꯁꯦ ꯌꯦꯟ ꯁꯤꯇꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯖꯩ ꯉꯥꯎꯖꯕꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ
1: ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯨꯀꯣ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯥꯎꯖꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯃꯥꯅ ꯏꯆꯦꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ
1: ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯒ ꯁꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯪꯉꯒ ꯆꯠꯄ
1: ꯍꯥꯏꯗꯤ
0: ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯆꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯎꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦ
1: ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯔꯛꯑꯒꯦ
0: ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯃꯔꯛ ꯁꯤꯗꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯊꯟꯗ ꯉꯥꯡꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯟꯁꯨ ꯐꯖꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯑꯦꯕ
1: ꯁꯤꯕ ꯃꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯈꯥꯏꯕꯝ ꯎꯃꯣꯅꯤꯅ ꯁꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

0: Akashvani Imphal, haujik ayuki pung nipal tari, Delhi degi rileda, Samachar Prabhat, Morning News amadi, Silong degi rileda, awang nongpuk lamdam gi pausing, matang matang taba fangbiragani.
1: Prabhat ke saath mai Muni Sharma. मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
4: रास लाफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
4: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेशी सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
4: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमरीका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
6: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
7: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन टू एड्रेस वाइडनिंग रेंज ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0, match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
9: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
10: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
9: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
11: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. That also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE.
9: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. She added that India continues to be among the world's fastest-growing major economies, with GDP growth projected to remain robust at around 7% over the medium term. The summit was chaired by French President Emmanuel Macron. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch Quarterly Report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, Dr. Lahiri said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
12: It was a short-term problem. I hope the war is going to end. Peace will prevail. And the impact was in terms of energy prices and transportation cost. Freight rates went up. There was disruption. You'll find even in these figures somewhere, prices went up, but quantities were not available. So there was a problem. I think it was a temporary supply shock.
9: India's critical mineral mission has gained significant momentum with the successful auction of 56 critical and strategic mineral blocks and 11 exploration license blocks by the Ministry of Mines. The Ministry has successfully auctioned 10 critical and strategic mineral blocks under the 7th tranche of auctions, taking the total number of such blocks auctioned to 56 out of 88 blocks offered so far, with a success rate of over 63%. The Ministry informed that for the first time, critical mineral blocks in Gujarat, Uttarakhand and Telangana were auctioned by the centre. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. More from our correspondent.
13: Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th July when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. On February 20, the U.S. Supreme Court struck down sweeping tariffs. This led the U.S. administration to impose a temporary 10% tariff under Section 122 of the Trade Act on all countries for 150 days starting February 24, which is due to expire on July 24. Following a de-escalation in bilateral trade tensions, the U.S. reduced the reciprocal tariff on most Indian goods to 18% and removed a previous 25% penalty tariff. India had proposed reducing or eliminating tariffs on a range of U.S. industrial and agricultural goods, including dried distillers' grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fruits, soybean, oil, wine and spirits, among others. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
9: U.S. President Donald Trump claimed that Iran has agreed never to acquire a nuclear weapon as part of what he described as a historic peace agreement that ended tensions in the Strait of Hormuz. Speaking at a Mack Trucks manufacturing facility in Pennsylvania, Trump said preventing Iran from obtaining a nuclear weapon remained the central objective of his administration's policy towards the Islamic Republic.
14: As you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. It's never been any, you've never seen anything like that. We are ensuring one thing very importantly. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that.
9: The International Maritime Organization, IMO, announced an evacuation plan for more than 11,000 seafarers still stranded in the Strait of Hormuz. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said in a statement that the IMO has secured the necessary safety guarantees and verified safe navigation conditions to support the evacuation operation. The operation follows the signing of a Memorandum of Understanding between Iran and the United States and will be carried out in close cooperation with Iran, Oman, other countries in the region, and the maritime industry. Back home, Tamil Nadu government has approved the Vetri Tamidagam Vision document. A key initiative of the document is Maternal Uncle's Gold Ring Scheme. Under the scheme, a 1 gram gold ring will be presented to newborns of families permanently residing in Tamil Nadu, provided the delivery takes place in government hospitals. The state government has allocated an annual budget of 755 crore rupees for its rollout. Chief Minister C. Joseph Vijay has directed that tenders for the scheme will be invited immediately. On to sports. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. The Group L match between England and Ghana at Boston Stadium in Foxborough has concluded in a goalless draw. Following the draw, both teams moved to 4 points from 2 matches, remaining tied at the top of Group L. In another Group L fixture, Croatia defeated Panama 1-0 at Toronto Stadium. The IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
15: Thank you, Anuja. Center tightening norms for foreign contributions has been widely covered by all the dailies today. Hindustan Times writes, government issues new rules for Foreign Contribution Regulation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और इसलिए श्रोताओं कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा कर के भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
2: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
3: Yes!
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी।

0: मराठा और हिंदी में लिखा है।
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार

0: अने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
1: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
1: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
4: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई,

0: मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
1: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: ताबीरे उमंग थरमसी एनसीईआरटी के तेंगबांगलोने ना संदोक चुबा थरमने
6: Mahindra's all-electric SUVs, the BE6, XUV9e and XUV9S, with a real-world range of over 500 kilometers, lifetime battery warranty and ultra-fast charging from 20 to 80% in just 20 minutes. So what are you waiting for? Visit Shiv's Auto Imphal for test drive today and bring home your dream car.

ताहन जख्रीबा इसे इसे बशंतगी नोंगालम दाय हरे बफल मधु दगी सदानंदा अमदी रोशिबिना अनिगे अपुन बखोंजल दा तेज खेत्री ना सैरेंग बा आर के जी टेन ना सैरंग बेसेन मिचा नब मिकुप्ता नुंगशिबदी हाउख्री नुंगशिबगी लंबी दा थमोय नि चेतमिन नब हाउद्रिंगई नुंगशिबगी वाखल दा तुमदुना मंग मंग लिंगई नुंगाइबा इथक इपोम दा कक्ङाउ नरीबा शाबी शानौ अनिगी लोन थोक तबा वाहिदा अशुम नहाई।

आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबीरसी रामायण वारी मतांगना उत्तरकांत की मनुंगदा कुबेर का राबोन का लान थेंगना बा वारी लिबीरिबा नोंमाइथेम प्रियो कुमार।

काकुस्तन करुणामयो गुणनिधि विपर प्रिय धर्म काम राजेन्द्र सहित संधनं दशरथ तनायानं श्यामलाया शांतमूर्तिम्।

भक्ति प्रणाम भक्ति प्रणाम कच्चरी बागमता सरस्वती इमागि चोरुवंदा भक्ति प्रणाम कच्चरी नानाय तोल बबू ज्ञान मंगान पीबिरीबा ज्ञान दत्ता शिरोमुनि मम शिक्षा गुरुदेव चोरुवंद तोल बननायन भक्ति प्रणाम कच्चरी ताइनरक पाशिता नाम उत्सर्वोल्लोबिरीबा पुनम कि मफमदा तोलबननायन हन हन भक्ति प्रणाम कचरी श्री सदा शिव नहाई तारु पार्वती दुर्गा पांबोम तारा पांडी हिमवान गिरी नमचा बिंध जोन गिरी नमचु छती किंगाय हुई भी पार्वती दुर्गा नमो महादेव ये हरगा ननाय दुर्गा की मरीदा ऐमो रघुमनि की सात कांत रामायण हदन लेखम रामायण पुराण शिगी तरे चुबा कांता उतर कांत की मनुंदा प्रसंग से मखादला कदव प्रसंग से मुक्त वर्णन ओजरेगी इमोगी नाम से गानु वीरो हैदन हंक चरप काल मुक्त तारु पार्वती दुर्गा ऐमो रघुमनि की रामचंद्र के नाम सीधी ताव विशु पेन बले तब अदुगुम लबा रघुमनि रामचंद्र के नाम नाम ताब मतम दा पुंग एकांत्रिक कोने सर्वोल लोग दबनी तारी बनी हैदना पंक्ता तावन दी दिहे दलेर बस सर्व पाप को पंगम रामगिं गुंदी महादेव ऐना थागतना ऐना हाइदना लोई बनती एक ही राम नाम जो पिले सोष्ट नाम पुण फलम रामगिं नाम अमुतंग सोन बना देवतामगिं नाम लिचिंग लग सोन बको चप मानवा एवं रघुमणि श्री रामचंद्र की गुणवालिनी प्रिय शिन प्रिय अदगुम लबा अगस्त मुनीना श्री रामचंद्र मखातला कदब से नाना अमुगानु जरिए अगस्त मुनि की मफम श्री रामचंद्र ना गुरुदेव मखातला कदब अमुगानु बिरु रावण महाराज मान ब्रह्मा की बोर भंगना लंका लय पाक्त हंग्रव कांद कम दौबगे अमु गानु बिरु ननाय सर्वो नु जर की हेन श्री रामचंद्र ना दुगुलवा अगस्त मुनि की मफम दा हंक चरप मतम द तारु प्रभु रामचंद्र रावण महाराजा कुंभकर्णा विभीषण मचे मनाओ अहुम मचे मशीना हिमालय की चिंखोंग दो मधुदा जय कया कतना ब्रह्मा पूजा कतन ब्रह्मान लिंग थोए हेरगा रावण की मफमदा बोर पीरी अदुगम लवा कुंभकर्ण मागे मफम दसु बोर पीरे शु विभीषण मागे मफम दसु बोर पीरी मच्छे मना ओह मसे बोर फंग तम से मसीद लंका लय पाक लहर गा अदुगुम लवा पता लय पाक लई घवा माली सुमाली मैलावान चिंगबा लेदिबा पराशूर न चिंग मयाम मसी हिंजाव मयाम मसी पुल लंकाल पाकुखली लंकाल पाक पताल पाकता बादुम लवा हिंचाव मयाम से मसीना रावण महाराजा ब्रह्मा की मफम दगी ओ जो ओमोर मक फंग्र बसु ओ जो ओमो गुमनम कनागुंब जीव अमतना माबू अपमान पीबंगम दबा योंग
नर वेता नर जनो मी मपोग तो पोप से सिक न तना अतो पदा ले जैख रेखा दानो गंधर पन चिंग लेब लाई लाई मैम से मसीना राबोन माबुक मृत्यु हैबदो पी गमदब और सुनु ब्रह्मा की बोर फंगबदगी अदुगुम लबा पता लेपाक्त लेब हिंचाव मायाम सुक्षर चिंग मरीस खर दुसन चिंग मायाम से खो खोप कौखले बोर फंगबने मायाम से मनि मखा तौदना सुनो भूमि सना लंका दुगी मनुंग अदुमक तदल लेरिब मुनि ऋषि मायाम मुद लाइनिंग मायाम मुद मखोइन मनि मखा तौदन हिचाब मायाम से मसिन मनि मखा तौदन छार खार छा न चैखाई रखा मुनि सिंह धोप तोप न चिंगबा ध्यान तोप न चिंग कहल पकाल से मसी मत खा मंगम माया मसीना अदुगुम लव लंका की निंथौ कुबेर मा की मफम द पाव सि तंदना कुबेर महाराजा मनाऊ रावण की मफम द पाव कया थाई थेंदने लेरिब रावण अदुगुम लव मयाम हाब या थो मधु इंदिने रावण महाराज रावण तौगी है मतागुम नमसीदी मथंग मथंग कुबेर महाराज न थारप तेंगोल मयाम से मथंग मथंग प्रालोर पा मसीदी खा मंगम रावण महाराज मागी माइके अदो अदुम तदा कुबेरा महाराज से मसीन लान चंगदगी मसीद छाचो लांग पछोम दु लेरब रावण महाराजा तेंगोल मया हिंचाबगी तेंगो मया मसे मसीग लोन रेहरग मसीदगी रावण लान चंग पामा प्रिय अंगपगी मछक ने रावण हिंचाब कुंती कुंथा थांग पाइब न परेंगमा ता पाइब न पंक्ति अमा मुर छोल पाइबन परेंग अम मुदगद पाइबन परेंग अमा छगो तुम परेंग अम छमु तुम न परेंग अम पंक्ति परेंग पंक्ति पंक्ति परेंग परेंग रन भूमि ऐसे मसीदा लिंगजुंग लिंगजुंग चुबाग चुबाग तेंगोल माया मसी किरि किरि किरि किरि किरि इन दना मसीद चखन लान चंग पनी ने प्रिय छोंद रावण की सिंहनातल नोंछा ललाओ से मसी खोजें ताबदा अदुगम लब लंकाद नतना लेरिबा त्रिभुवन मरुलहु मचे थक थक त्रिभुवन मरुलहु मचे थक थक नीलप काल छे मसी मत लेरिब देव सवा मया मसीन करम नो रावो लान चंग ए रावण मागी मफम दौ ब्रह्मान बोर पिथोखीबन मरम ओरिहरगा लेरिब लाई मया मसे मसी बुरा बोन करीचु लेतन खले कमनु न कमदौगद गे हाइदन मसीद लाई मया मसी पाखत न दन लई रावण गी धनी ताबदा लंका कोनुंग न लेरिबा अदु गुमलव कुबीर महाराज मागी तेंगोन छाजो लाग दना मसीदी सामूग सामूग सगोन सगोन गा खोमी का खोमी के लानमी के लानमी गा थोलक तरम मसीद लंबा पार पावा प्रिय अंग पगी मसगो हे अदु गुमलव कुबेरा रावण मनाओग लंबा पाप मतम से मसी मतदा कुबेरा मागी गर्भदले रिबा विद्यापुनमग से मसी पुथु एर कनागी तेनगी जाता अमरथ समर्थ ब्रह्मजल इंद्रजाम बैरुबान छिली मुख छिछी मुख क्वाक मुख बेक मुख तारावान दुर्गा वान छ तेन मया मछे तेन दुंग दगी सट पग थो मुख था पग तेन आग ते मुख तेन को किरि किरि किरि किरि कि इंजन न काप छलक पा रावण मासु हनबन ते दो प्रिय रावण छु तेन दुंग दगी तेन मया मछे सट पग थो मुख था पग तेन आग ते मुख तेन को किरि किरि किरि इंजन न अदुगुम लवा कुबेरी माइके दे तेन तम धप कुबेर राबोल अनि न काप प तेन माया मसे बाना बाना काता काते लंबी गी तंखाय दो मदुदा तेन ग थब थब कथत न तेन अतेक प तेन माया मसे मसिन तारक पसी करी गी मतौनी पोंगनु माछे पोइनु था दो मदुदा
लिखला पुदित पुन चुबगी मतौ गुम ना प्रिधि लयमय मछक उ दना मछद तेन मते बया मछता अंग पग मछ उ हरे प्रिय अदुगुम लवा रावण मागी दिहे दो मधुदा कुबेरना कापक पतेन मया मसी रावण दिहे द थाब द रावण मची लिंग दि करीना ब्राह्मागी ब्राह्मागी अदुगुम लवा बोर दो रावण मान फंगी बनिना ब्रह्मागी बोर लेबा ब्राबोन मागी मफंदा थारक पतेन मया मसी कशु रावण द चंगदबा मसी उरेगा अदुगुम लवा कुबेरा तीन का पग खुदांग चो थर पनी अकन बल्लान फमनी लाई छवा पन मक्षी अंग पगी मशक ओही रावण कुबेर अनि थेन बल्लान दा अकी ब मक फंग न ओही रवा लाई छवा मशी देगी रावण महाराज न तीन सिखु का भेंजल ना हेंजल तना छत छत छत छत तीन छी छत पग थोम ग था बग ते नाग ते मंग ते को करी करी इंजन दन कुबेर की माई के इधर कपछलक प मतम दा रावण की तीन से कुबेर न कक पंगम ददना कुबेर न पायरी बल्ली रूंगा तो मैं आयद ठेगा ककतना रावण माना कुबेर की लीरूं ककतन था धबा कुबेर मनाव रावण न लीरूं ककतन था धगरे आयद ना अंबारी का चंदले रबर लीरूं अब तो ताप पाई खले रे लीरी चंद ये तो हुए लीरी चंद में नंग दिंगे दर रावण तीन न मकाब छतना लीरूं ककतले अचुम न ताऊदना कुबेर मान पाइखल पाइखल पलिरुंग छे मसी रावण थबत थबत थबत हे तक पदा कुबेर लईबा दोलाय मथक दो मदुदा लिरुंग अमत लेरे तेरी उपाय ले तरब कुबेर नाकंद लईबा गदा पाय रे हरगा अदु गुम लवा रावण नि माई के फन दोलाय दगी चोंग धरी हरगा पुष्परथ दोलाय दो मधु मथक तगी चोंग धरी हरगा कुबेरा गदा बाग छे मसी लई दिन रावण की माई के चंखल पर रावण महाराजा हिंचाव जात पोब सुख क्षेत्री धर्म दि मशक मुन खंग रावण मीना थांग पारंग थांग पाएगनी ता पारंग ता पाएगनी गदा पारंग गदा पाएगन लिरुंग पारंग लिरुंग पाएगनी मुन्न खंगवा रावण महाराजा कुबेर मान गदा पाए हरग चोंग धर पदो बदा रावण झु लेरी बलेरु गदो थब में हरग ना कंदगी गदा पाए हरग मची चोंग धर तना रावण कुबेर अनि थेनर पलान गदा की पाक तक काना की अथाली पथाली लाल से अंग पुई ही रावण महाराज ना अदुगम लबक कुबेर से मची नम दना अपमान पी बदाम रावण मागी चैथा खांग मंगम ददन कुबेरा लंका ले पाग था दोक तने चेले प्रिय कदाई दा कैलास ला महादेव की नाक तो चिंचन देने प्रभु महादेव की नाक तो चंचल लगते ना प्रभु नना ये प्राण कन भी लंका ले पाग ता ये ले बिहाद रे रावण इनाउनु पाना ऐ रथ पुष्प रथा दो लाइन चिंबा मयाम से खो खो पा मुल्हौरे लेपा मुल्हौरे ऐगी लेपा ऐगी चंग्य भम पीबी उ प्रभु आयतना महादेव की मफम दा कुबेर हंक चब मत मधु मक्त दा महादेव ना कुबेरा मधु की दमक तक करी धोनो अग्नि से से ऐ वाह ये से महादेव ना ऐ ले दी ऐ ना ले दी बा कैलाश से मसी अवांग थंग बस है मसी दा नंगी देश छेम दना ले रो अग्ना हाइब देश से मसीद नंग पांदन ले रो हाइदना अदुगुम लवा कुबेर मागी मफम द तापी बदगी कुबेर गिम देश दो मधु महादेवन विश्वकर्म कौड़ी हरग विश्वकर्म खुह खुटही बना फज्जन निथि द शेम दन कुबेर इरे जना जगाद द लई ही प्रिय शिना कुबेर भावत जोई तोरवा रावण महाराज कना गुंबा मी लाई तीन करी गुमा मत की रख तेरी रावण मागी मफंदा ब्रह्मांड बोर पीब मतंदा योंग नर जोनो हाइदन लेरी बा अनिये से मसीदी मखोई मखुत प्राण थाव है बदुदी थागनु है बादुदी लेरम दबा सीना दबा नर जोनो पचु योंग से मसी अनिशिन तब अतोप सिंह सिदी
마시기 마쿠타라보 능 프란타다보 오로 능이 미투오드보 오로 하이드나 브라마나피 히바니나 라보안 카나고 마맛 தக்கீபலைத்தே ஜக சங்சாரஸ்தில் லைதிப மயாமசி அக்கீபதோ கஜிக் ராவோன் இப்புங்களை ஹிதரே மசினாம் ராவோன் திக் பிஜோய் சலகி பிரித்தி தி பிஜோய் சலகி ஹேபசே அதும்லப ராவோன் கல்லதன மாகி தேங்கோல் மயாமசி சாஜோல் லாங்னா மாகி மாம பராஸ்த மாகி மபம்த சனாபதி ஹாப்பேரக மாம ராவோன் ஐ தி பிஜோய் சச்கனி ஹைதன தி பிஜோய் சக்கலக்கா சினப்பிரிய திக்விஜயசே மசி சும் சும் சும் சும் சலப்பசே மதங் மதங் மதங் தேச தேச கிரா அதுகும்லப லைப்பாக் லைப்பாக் மயாமசே மசி ஜோய் தௌதன லாக்பசிதா சேத்தகி மகாராஜன பான்பா அதுகும் லைப்பாக் அதோ மதுத கம்தௌபகி ஹைபு சேத்தகி நிங்தௌசே மசினா பிராமன் லிசிங் குல்லசே மசி கௌடேர் மதுத ஜெயிக பம்னன் லைப மத்தம் மதுத சேத்தகி லைப்பாக சே மசிதா ஹெக் யோக்ஷல பக்காந்த ராபோன் கி தனி தெங்கோன் தனிய சினதி கன் ஹிவனா லைப்பாக அது தக் தக் நிற்பகி மத்தவு கும்ன நிலப்பா மது தாரி ஹெரகா பிராமன் லிசிங் குன் சேத்தகி நிதவு காமி மகாராஜா ராபோன் மாக லம்பா பாபிகனு ஹாய்தனா பிராமன் லிசிங் குல்லதோ மதுனா மகாராஜ சித்த கிபு காம மதம் மசி ராபோ மணி மகாத்தவுன சங்கல்லக்தனா பிராமன் லிசிங் குல்லதோ மதுகி மபம் தாப்பிரே ராபோன கரிகும்ப லங்கா சுணு பூமி லங்கா லைப்பாக சே மசித ராபோல் ஐன நிங்கோதன பால மத்தம் த ஜெய்கமதங் கலப்ப மத்தம் தான் நசியில் லைரிவாசிகும் லபா நிங்கௌ லிசிங் குல்லசே மசி ஐகி ஜெய்கத யாவதபதி மரம் மசினா லைரிப பிராமன் சிங் அசே மசிதகி ரக்த கஜிக் கஜிக் லௌகனி ஹைதனா அதுகும் லப ராவோன் மகாராஜா பிராமன் லிசிங் குல்லதோ மதுகி மஃபம்தகி இ கஜிக் கஜிக் குதோ மிதோ மதுத தௌரேரக இ கஜிக் கஜிக் கஜிக் கோச்சபுவதோ மதுத பிராமன் சிங்கதோ மதுன தகலக் பசின் பிராமன் லிசிங் குன்கி ரக்த இ கு இசே மசின் தாரப்ப மதம் நதி பிரியே அது கும்லவா சபுவதோ மது பிராமன் கி ரக்தன பிக் தள்ளி பிராமன் கி ரக்தன பிக் தலவ காலதோ மது த பிராபுன ஆ மசி வருதி யாரே மசி பூரகே ஹைதனா ஏ நிங்கின ஜோத்துவன் தௌதனா அது கும்லவ கால்சி சப்புவதோ மதுபு இரேன் மக்கும் சேத கும்ஜல் ஹெரகா அராபோல் அமுக் போர் ராவோன சபு இ சபுசி பூரலா ஏஹரகா லங்காலை பார்த்த லங்கா கோனுங்கு தம் மசிதகி ராவோன் மகாராஜா அதுகும் லபா லைம சாத்தே அதுகி மனுந்தகி பிரதான் ஒருவி மந்ததொரி மாகி மபந்தா ஹாரிப ரக்தா பிராமன்கி ரக்த சபுவதோ மது சினை பேமா சே சே மசீன ஐன பீரிப போரசே மசின் ஹாங்தோக்தன மசிதி ஹூனி ஹாரிப ஹூவசே மசி கனா கங்கன்பயாதி ஐ செக்ஷன் தம்கி கோஹன தமம் மேஹரகா ராவோன் மகாராஜ சே மசி இரே திக்விஜய் அமுக் சச்சிவனி பிரி மதாங்கசிதா ஸ்ரீ ரகுமணி ராமச்சந்திரன் அகஸ்த முனி ஏங்கா மகாமுனியே மந்ததோரி ந பிரதான் ஓய்தனா ராபோங்கி மகாராணி சாட்டியலை மந்ததோரி மாகி மப்போக்கி வாரியசே பசிவன் ராமகி பம்த அமுக்ததி தஹன்பியுனே ஹைதனா அகஸ்த முனிகி மபம்த ஹங்கச்சரப்ப மதமதோ மது மக்ததா அகஸ்த முனினா தாரோ ரகுமணி அதுவும் லவா மந்ததோரி மகா அசே மசி ஏக சொப்போ ஏக தின் சொப்போல மனா மந்தோ ஹங்கோய் மச்சா மபுசாகி ஹெதனா பிக்ரபல் இல்லசே மசினா ஹங்கோய் மச்சா அசி சாகதகி சும் தானரப்ப தானரப்பா ஹங்கோய் அசே மசி நதி மாகி ஜீவசே மசி ஹிங்னபகி தமக்த பன் பன் பன் பன் பன் சோங்தனா லாக்
행운이시나 이행행도 종업 것이 무엇이다. 어디 겁나 봐. 말가 봐. 하여튼 거 브라흐마나.

0: ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛ ꯃꯠꯄꯤꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯅꯥꯏꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯅꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ, ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥ꯫ ꯃꯍꯥꯛ 1948ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 19ꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯖꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯕꯨꯗꯧꯁꯤꯡ ꯊꯦꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯔꯣꯂꯤꯂꯂꯥ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯔꯣꯂꯤꯂꯂꯥ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯪꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯦꯝꯕꯨ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯤꯜ ꯇꯥꯎꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯝꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯕꯦꯆꯦꯂꯔ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯋꯤꯠꯋꯥꯇꯔꯁꯟꯗ ꯂꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯂꯝꯗꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯕ ꯏꯍꯧꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ 1994ꯗ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 1997ꯗ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ 1998 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯉꯧꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯚꯣꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯉꯧꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯛ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯕꯨ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯦꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯕꯨꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯒꯚꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈꯤ, ꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯊꯝꯈꯤ꯫ 1994ꯗ ꯎꯝꯈꯣꯇꯦ ꯋꯤ ꯁꯤꯁꯋꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 17 ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ 1993ꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯐ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯔꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯦꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯗꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ 1994ꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥꯒꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ 1993ꯗ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ, 1994ꯗ ꯂꯦꯅꯤꯟ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯔꯠꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ 2012ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 5ꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯖꯣꯅꯤꯁꯕꯔꯒ ꯀꯥꯟꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 45 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902 और चौथा नंबर है +99932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक

0: औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से इस पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थीं। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने

0: के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, प्यार को दर्शाने वाले प्यारे प्यारे भावपूर्ण गीत आप सुनेंगे आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत में। तो सुना जाए आज का पहला गीत फिल्म गैंगस्टर से अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। नीलेश मिश्रा के बोल हैं और

पेश है अगला गीत फिल्म सलाम नमस्ते से सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में, जयदीप सानी के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

दोस्तों, अगला गीत आप सुनेंगे के और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से। विशाल ददलानी के बोल हैं और विशाल शेखर का संगीत।

दोस्तों, हम इंसानों को सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार है तो सब मुमकिन है। कंगना चैनल में प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुना जाए फिल्म जहर का ये गीत आतिफ असलम के स्वर में, बोल हैं सईद कादरी के और संगीत दिया मिथुन जल द बैल और नरेश शर्मा ने।

दोस्तों अगला गीत पेश है श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

दोस्तों, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों को सुनने के बाद सुना जाए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म खट्टा मीठा से के और सुनिधि चौहान के युगल स्वर में, इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

0: फोर्थ की थर्म द फिल्म संगीत ताबिरी।
1: हेलो खुंगंग लाइव फोन इन प्रोग्राम।
2: हेलो खुंगंग लाइव फोन इन प्रोग्राम। था खुदिंगे अरोइबा थांगजा खुंगंगे थौरमदा संदोकचबा।
1: हेलो खुंगंग चलिबा था सिगी ओइना लाखलिबा जुनगे तांग कुनतरेत थांगजे नुमित नुमिदांग पुंगतरुक मिनिट निफु खुंगंगे थौरमदा संदोकचगेनी। हेलो खुंगंग लाइव फोन इन प्रोग्राम थमजुरी बिहिरम मपुंग ओइबा लौरो की सेमसाबा एक्सपर्ट ओइन लेंगसिन बिगदाबा डॉक्टर सोंगथाम रोबेन सिंह SMS एग्रोनॉमी KVK इम्फाल वेस्ट।
2: मियाम ना स्टूडियो के टेलीफोन नंबर
1: 9362327078 कॉल तो बिरक्तुना थोरम असिबु सरुक याबियो। हेलो खुंगंग
2: लाइव फोन इन प्रोग्राम।
0: आकाशवाणी इम्फाल संदोकचरी चिंगलोन गिसैरो थोरम सुदा ह्वालेंटिंग अमदी कांगुदगी सिमते लाइसोलिसै।

0: soin. Tavolo inule lojo cro aqua amemo coprocho hino, omocole somo crocapi soe, ye hido coheo cobuchiluli, aqua uje ajocolo, ye abobocochohi, mutsuhe de cochope manicochohi soin. Application of artificial intelligence in journalism and media fact checking, you know, workshop he is your Directorate of Information and Public Relation Imphal ji auditorium heno soloi workshop nahi Department of Information and Public Relation DIPR Government of Manipur no chithe sao soi josovoli IPR Government of Manipur Secretary Hungyo Worshang IAS no ushu motsehi sopia workshop li AI amaji e motsa khrovano uchipe kapihi sopia Tagutu chituli uchi ramakra foko koduno Imphal Jiriban Lova National Highway 37 li bufa kosli umi mikata wano korra ahe kochohi kuchi creative tie kukhamai no kape the pro Tamenglong district li Kaimai police station khule kubu Sibilong ye kaimai inu kole CRPF camp kahie he shanti khunau heno umi ame ma shishu tatie tiwe Lova kakri kutu valo kuru duno chuto kahai kosihi lotia molo chiwe. Manipur Science and Technology Council Mastic Achiti Krolino Manipur li chis hepono sa maji shu kubu laramudanamui duno chuto kosu kolo Science Motivational Program nahi Imphali Manipur Science Center takial patheno jo sothotia. Fro kutu chosu voli hi Yasht Science and Technology Government of Manipur Secretary Noiram Pravin Singh IAS Science and Technology Government of Manipur Director Chinga Kham Sachi Mastic Director Dr. K.H. Rakesh Khrono Volo Kapihi Sopye E Kukriya Kubu Government E Private School Leno Lera Mudana Mui Shacharo No Volo Uje Jo Kapihi Soe Josevo Ji Uje Kali Soe Mathematics e physics vano modoko chohia so mani kapihi soa. Ayushman Bharat Digital Mission Manipur e Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana no Akua State Model District Imphal West e State Model District duno workshop nahi jo Imphal li Chingmarong hek bu Classic Grandi ji Imperial Hall heno photopiotia. Josovo li hi NHA CEO Dr. Sunil Kumar Barnwal, NIH Director Dr. Pankaj Kumar Arora, Health and Family Welfare Government of Manipur, Commissioner cum Secretary Suman Singh, Imphal West DC Mayang Lamba Rajkumar, a District Kotsalojo Krono, Volo Ujijo Kapihi Supia. Manipur Chief Minister Yumnam Kenchan Singh no Idu. Manipur Olympic Association no chithe sao koso International Olympic Day rand puno sibu kushu chosovo lihi volo uji joko chohi soa. Chosovo nahi Imphal li Kuman Lampak Sports Complex li Olympic Bhavan ko hele no soa. Manipur jihali hi. Umaymu shiacharo no ukri jio akua shokocho soa buye. E Manipur li no kukru kocho mui. Lomo International Sporting Li Praku Krukocho Indian Ummu Lehi Chukumokalie. E Kukrukocho Lihi Nusodono Idemoko Asokocho Tibu E Ujukai Pajihi Manipuno Povo Kochohia Bueto Chief Minister no Pemumoka Pihia Swam. Indian Sports Odoli State no Ovoso E Asokocho Idemoko Povo Kolo Dono Nusoli. National Sports University Karre Nahi Manipur Le Sotholoi. Earth Odoleno Padma Sri Award 2026 Thibu Nikolo Guru Sanyo Sang Ponjainer Yehi Chief Minister Nifirio No Assao Pekushu Kapihi Sopiyan. Tagudu Mufu Rechorro Heko Guru No Alia Koshato Thelesa Nagaland Folk Heritage Hichiku Ililo Kuro Duno Ovoso soko kruhi siprakolo ti mafuna nifiriono ukrupa pekushuka pihi sopia. स्टेटली मुफु किया थेनो करेसो सेप्टेम्बर क्रो लेनो इंडियन एयरफोर्सेस अग्निवीर वायु स्कीम दुनो ओपन रिक्रूटमेंट रैली सोता को नही मुशुकुरु दुनो नागले नो सोदख्री ट्यूटिया मुशुकुरु दुनो कोफ्रो कोलोही जोख्रो जोंगो करेली ओहिमा हेनो स्पेशल सेक्रेटरी होम अचिथि लेनो अमेमोचो लेनो कोफ्रोलोआ रैली लेही अग्निवीर वायु नॉन टेक्निकल कैटेगरी ख्रुलेनो नीटो फोटो कहाई दुनो रापी कोचो सोला रैली नही चुमु किदिमाली नागलैंड आर्म पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हेनो सोकुरु दुनो मसप्राय अरुणाचल प्रदेश हेल्थ मिनिस्टर बियोराम वांगेनो असोचिथु कलिनी स्टेट टेले रेडियोलॉजी हब रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम नही नहर लगुंद ले टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस है फोटोकॉपी सोपिया नेशनल हेल्थ मिशन ख्रुलिनो सुथु कोचो नही मोत्सो रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स ख्रु अकुआ अरुणाचल लेकुबू हॉस्पिटल्स ए हेल्थ सेंटर्स ख्रुली डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रेडियोलॉजी नेटवर्क थोपी स्टेट थोपले कपे कोचो सुथुलो कुरु दुनुआ सिस्टम कुथु ख्रुलिनो उका कुदो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उबु ख्रुलिनो एक्सरेस सीटी स्कैन ए रेडियोलॉजिकल फोटो फोका प्रख्रुही ऑनलाइन लेनो माचिसो मतालो कुरु ओके नही पिले ए कोसो सप्रा कोचो ही कोथो सप्रा कोलो ही सोले दुचिख्री यूनाइटेड स्टेट ली हुस्टन हेनो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप के ले पोर्टुगल ए उज्बेकिस्तान कुक्रु कवा चोली पोर्टुगल नो कोरोपुंगो ही तेथोलो जिलोय मुफु रेपादा कालु कपरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो नो कोरो कहा ही तेथोलो तिथो कोलो पुनो लोवो पोर्टुगल नो कोरोपुंगो थोलोवो जिलोय जोको हिहिसे निखमनो जोको चक्रिपी मुशुही निखेनी खोलिनो फोपेलो जोकोचो मफ्राय मुशु मुशुनो चक्रिलिशे
1: Roje ko wakapi joe dele rolo Rolo ni leilo rishe takale Maina I chu rishe chu pire machizo da locho Locho li tekina teku puno heri le Maina I totsu enu heri Unpo kra oke ka imase I velu sere liuku do honkwe ino ni pile namake ye honko kulere. Chi ohe mole te opu kino ondano so. Chi ohe mole te opu kino sheze olu nulu so elu da u lewe sori. Sori no pire chili na si na za rolo boni pume mokri nire. Nire vehu cha kachi tohu hon li esako bume ma ke mondo so po lu po hon. Po hon ko li mo ko po ma re ro e mo cho e po chika hen me ko li mo hon mo cho e he ro ko ro ko po ro ni ko nukri. Nukri chok tu me shashibu na chize kakri shomono.

नग्न लेरिंगई लाइन खलुबा मैशाक हेलकले थाप थाप लगा वारो रमगनी नंगी थमोइना लोन कपखिबा पिरांगी लमन मिटुगी पिरांग सिंग लगिंगसी मथंग मुखदोल तमजरी कृष्ण अला जीजस फिल्म सिदगी कविता कृष्ण मूर्ति की सहेकता सनातो निंगथौजा की मयेकता खुन जोय कुमार न सेरांगबा शेई।

बगी मथेला सि मत यहा हाबी द बबू करी तौर बगी मो नोंबा लथा कुम्यान बनता लोई अतुम बि सिंग न येंग लेग हाय खजिंग सिंग असिन खुरु खदक कुंदन लैबसि उरुरे हायरगा लाइर बलम जाना खुरु खदक संसा लैदन कुनब माली मसक असि येंग ददन तौबनी सुमना नोंबाला थाकुंग यानबाला खुरु खुदक कुनर लैरिब खजिंग को फाबी दो मता पारे हरगा थक लाउनो हुक पददी हाइमाई पेमा नोंबाला थाकुंग यानबदो महाउ दो मतो मनी हाइनै दै

लखीपुरगी लखी प्यारी फिल्म सिदगी पुष्पारानी की नाइटम खोंजलद रोशन सोरखाइबम सेरिंग बमदी सामू रौबीना सेरांगब फिल्म इसई खुदोल तमजरी इसई इसिबु पोस्ट कार्ड की खुथांगद खनबिरकलिबसिंगना परमपाट चुथेकदगी एनजी रणवीर अमदी वांखैदगी आरके तंपासना

0: ꯄꯥꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯛꯊꯤꯕꯤ ꯇꯝꯐꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯨꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯎꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯟ ꯁꯂꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ SMSꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯔꯦ, ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 25 2026 ꯏꯪꯂꯤꯁꯤꯡ 2026 ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯀꯥꯞꯇ 9:00 AM ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯋꯦꯕ ꯃꯤꯇꯔ 40.1 ꯀꯤꯂꯣꯍꯔꯁ, 9.42. ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯤꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅꯤ ꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯖꯦ ꯍꯤꯟꯗ꯫
1: 10:31 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का, और हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखुलूस आदाब। और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन सदाबहार नगमों को लेकर आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, बहुत ही नजदीक से इसे आप जानते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और कई बार उस पर आप थिरकने भी लगते हैं। और ये वो सदाबहार नगमे हैं जो अपने जमाने में तो मशहूर थे ही, आज भी उतने ही मशहूर हैं। उन्हीं नगमों में से आज हम एक बेहद खूबसूरत फिल्म सुहाग से लेकर के आए हैं, एक बहुत ही प्यारा नगमा। और ये फिल्म आई थी 1979 में। अपने जमाने की तो मशहूर ये फिल्म थी ही, अगर आज भी इसे आप देखना चाहेंगे तो आप उसमें खो जाएंगे। आज के सफर में हम चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस बेहद खूबसूरत सफर पर जब मोहम्मद रफी की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत मिलकर एक ऐसा जादू रचते थे जो सीधे दिल में उतर जाया करते थे। इनकी जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को ऐसे ऐसे गीत दिए जिन्होंने न सिर्फ शोहरत पाई बल्कि सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह भी बना ली। तो आइए इसे फिल्म सुहाग का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

तय उन चुनिंदा नगमों को जहां पर आप अपने दिल की बात करते हैं आप मेरे साथ, और साथ ही साथ हम उन नगमों को आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जहां हम सुनते हैं उन फिल्मों की दास्तान जिन्होंने अपने दौर में सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों पर भी राज किया। और अब बात एक ऐसी ही फिल्म की जिसका नाम है पारस। 1971 में आई यह हिंदी ड्रामा फिल्म अपने दौर की उन बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है जिसमें जज्बात भी थे, अदाकारी भी और संगीत का ऐसा जादू भी जो बरसों बाद तक अपनी महक छोड़ गए। सीबी दीक्षित के निर्देशन में बनी पारस में कलाकारों की एक बेहद दमदार फहरिस्त नजर आती है। संजीव कुमार जिनकी अदाकारी में हमेशा एक गहराई और सच्चाई दिखाई देती है, वहीं राखी जिनकी मौजूदगी पर्दे पर नरमी और असर दोनों साथ लेकर आती है, और साथ ही महमूद, फरीदा जलाल, शत्रुघ्न सिन्हा और मदनपुरी जैसे फनकारों ने इस फिल्म को अपनी अदाओं से और भी यादगार बना दिया। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आपको सुनवाते हैं, पारस फिल्म का, जिसको संगीत से सजाया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। उनकी धुनों में एक ऐसी कशिश थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, और इस नगमे को अल्फाज दिए इंदीवर, कमर जलालाबादी और वर्मा मलिक ने। तो आइए उसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। हर सिंगार जहां हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के उन फिल्मों को जिन्होंने अपने दौर में सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि एक अलग पहचान भी दिलाई। आज बात एक ऐसी ही फिल्म की जिसने रोमांच, संगीत और स्टारडम तीनों को एक साथ पर्दे पर पेश किया। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं साल 1967 में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म फर्ज की। रविकांत नागाइच के निर्देशन में बनी फर्ज अपने वक्त की एक बेहद दिलचस्प और स्टाइलिश फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में नजर आए जितेंद्र और बबीता और दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर एक ऐसा असर छोड़ा कि फिल्मी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। फर्ज सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी बल्कि उस दौर के हिंदी सिनेमा में जासूसी अंदाज को एक नया

रंग देने वाली फिल्म भी थी। इसकी कहानी में रहस्य है, खतरा है और वो सनसनी भी, जो दर्शकों को शुरू से आखिर तक बांध के रखती है। कहा जाता है कि इस फिल्म में बॉन्ड स्टाइल स्पाई ड्रामा की झलक भी दिखाई देती है, खासतौर पर एक एजेंट की मौत की तहकीकात और क्लाइमेक्स में मुख्य विलन से टकराव जैसे पहलू जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि फर्ज तेलुगु फिल्म की रिमेक थी और इसकी कामयाबी का आलम यह रहा कि आगे चलकर उसकी कहानी की रूह को आगे बढ़ाते हुए दो और फिल्में आई, 1973 में कीमत और फिर 1982 में रक्षा, जिसमें एक बार फिर जितेंद्र नजर आए। और अगर इस फिल्म के संगीत की बात हो तो फिर उसके संगीत का जिक्र भला कैसे अधूरा रह सकता है। अधूरी इसलिए नहीं रह सकती कि इस फिल्म का संगीत दिया था मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की और गीतों को अपने अल्फाज से सजाया था आनंद बख्शी साहब ने। इन दोनों में वो जोश भी था, वो नरमी भी और वो फिल्मी कशिश भी, जिसने फर्ज को सिर्फ एक जासूसी फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार म्यूजिकल अनुभव भी बना दिया। उस दौर में जब संगीत फिल्म की पहचान हुआ करता था, फर्ज ने अपने गीतों के सहारे दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम बनाया। तो आइए उसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की, और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम उन नगमों को लेकर आए हैं आपके लिए जो सदाबहार हैं और हमेशा के लिए आपके दिल में बस गए हैं। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म आए दिन बहार के से। यह फिल्म आई थी 1966 में। एक ऐसी फिल्म जिसके नाम में ही बहारों की खुशबू है, आए दिन बहार के। जी हाँ, आए दिन बहार के, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में रौनक सी भर दे, जैसे जिंदगी की गलियों में अचानक खुशियों की दस्तक हो गई हो। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, लता जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आए दिन बहार के से, जिसको लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

0: महेंद्र कपूर साहब और लता जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। हर सिंगार से अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर गीत मेरे मन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 3 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत का। और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिन्हें आप बहुत ही पसंद करते हैं। सुनहरा दौर यानी गोल्डन एरा, ये वो दौर था जहाँ पर हिंदी सिनेमा ने एक अलग अपनी पहचान बनाई, एक नए नए प्रयोग के साथ और नए नए विषयों पर, सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई गई जो आज तक याद रह गई, और वही फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से। आज की फिल्म यानी आज की इस पहली पेशकश में हम जिस फिल्म का जिक्र करेंगे वो है फागुन। साल 1958 में आई इस खूबसूरत फिल्म को विभूति मित्रा ने निर्देशित और निर्मित किया, जबकि कहानी प्रणव राय ने लिखी। पर्दे पर मधुबाला और भारत भूषण की जोड़ी अपनी दिलकश अदाकारी से इस अफसाने को यादगार बना देती है। फिल्म में बीजन एक जमींदार का बेटा नर्तकी बनानी से मोहब्बत करता है, मगर सामाजिक फासले उनके मिलन में दीवार बन जाती है। अधूरी रह गई ये चाहत पुनर्जन्म के जरिए मुकम्मल होने की राह तलाशती है और ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है। कमर जलालाबादी ने इस फिल्म के गीतों को लिखा है और ओपी नैयर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसका संगीत दिया है। तो आइए फिल्म फागुन का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में।

फागुन फिल्म का यह नगमा आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। और यह नगमा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और उनके साथ थे के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, ब्रह्मा भरद्वाज, चमनपुरी, निर्मल कुमार, महमूद, मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है कमर जलालाबादी साहब और हसरत जयपुरी ने और इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ, आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन गोल्डन गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1960 में आई के आसिफ साहब के निर्माण और निर्देशन में मुगले आजम। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत कुमार, मुराद जीलोबाई, विजय लक्ष्मी, एस नज़ीर, सुरेंद्र, जॉनी वॉकर, जलाल आगा, बेबी तबस्सुम और गोपी कृष्ण वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। और बात जब नौशाद साहब की हो तो फिर उनके संगीत के क्या कहने। उनका संगीतबद्ध किया हुआ नगमा सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप इसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो गोल्डन एरा की पहचान बनते हैं, सुनहरे दौर की पहचान बनते हैं। ये वो नगमे हैं जो हम सब उन्हें बार बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनहरे दौर के इस नगमे को और आगे बढ़ाते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म आवारा के एक नगमे से। यह फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वी राज कपूर, खुद राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, के एन सिंह, शशि कपूर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि इस फिल्म में दो गीतकारों ने गीत लिखे, एक शैलेंद्र साहब और दूसरे हसरत जयपुरी साहब। पर यह नगमा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1958 में आई मधुमति। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में वैजयंती माला, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और साथी कलाकारों में प्राण, जयंत, रामायण तिवारी, तरुण बोस और बूडो आडवाणी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो मधुमति का संगीत 1958 का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत बना। इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला। सुहाना सफर और ये मौसम हसी मुकेश के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है और आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म मधुमती से, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गुड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। तो आइए गीत मेरे मनमीत के सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और गोल्डन एरा के बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ। और हम आपको अब लेकर चलते हैं 1949 के दौर में। 1949 में एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जो बहुत ही मशहूर रही और उसके नगमे भी बहुत ही कामयाब रहे, और वो फिल्म थी कमाल अमरोही साहब के निर्माण और कमाल अमरोही साहब के निर्देशन में यह फिल्म थी महल, जिसका निर्माण किया था अशोक कुमार साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कानू राय, नाजिर हुसैन, शीला नायक, लीला पांडे, नीलम, कनीज, जगन्नाथ, मोहसिन वगैरह, ये तमाम लोग थे और इन लोगों ने अपने अभिनय से इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। इस फिल्म में तकरीबन 8 नगमे थे और उन तमाम गीतों को लिखा था जे

नक्श आप ने, और इन गीतों को बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा खेमचंद प्रकाश साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, राजकुमारी और जोहराबाई अम्बाले वाले की आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं सुन पाए हैं। उन्हीं नगमों में से ये बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं। और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म से, और ये फिल्म थी 1957 में आई नया दौर, जिसके निर्देशक थे और निर्माता भी B.R. चोपड़ा साहब। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, साथ में अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, डेजी ईरानी, मूलचंद, कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत आज के गीत मेरे मनमीत की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजू रहेगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीक के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news shared by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said, "They reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries." He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. The 12th Indo-European Union Human Rights Dialogue was held in New Delhi yesterday. During the dialogue, both sides noted their commitment to the promotion and protection of all human rights and emphasized the universality, indivisibility, and interrelatedness of all human rights. The MEA said that both sides discussed their shared interest in increased cooperation on humanitarian assistance and disaster relief. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counter-Terrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counter-terrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. Prime Minister Narendra Modi congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections in Armenia. Mr. Modi received a call from his Armenian counterpart earlier today. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. As a house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rules in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO informed them about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis met Andy Jassy, CEO of Amazon, and invited the global technology company to invest in data centers, healthcare infrastructure, and artificial intelligence-based skill development in the state. During the meeting, Mr. Fadnavis noted that the state aims to expand its economy from an estimated US$660 billion to US$1 trillion by 2030 and is increasingly using AI to improve citizen services and strengthen sectors such as agriculture, infrastructure, healthcare and education. To promote a digital and transparent system in the country, an artificial intelligence-based automated driving test track was inaugurated at the Bhuj RTO in Gujarat. With this change, both RTO tracks in the Kutch district have now become entirely unmanned and AI-driven. This system will also eliminate human intervention and bring transparency to the entire process. Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open Super 300 badminton tournament. The Indian duo defeated Spain's Paula Lopez and Lucia Rodriguez in the opening round. The duo will next take on Japan's Sumir Nakade and Miyu Takahashi today. And that is the end of this news bulletin.

तारों में नहाई ये रात और उस पे सरगोशी करती ये हवा। बार बार ये एहसास दिल करा रही है कि आगाज हो चुका है उस महफिल का जिसमें शिरकत होती है आपकी और महफिल सजती है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म स्वामी और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, हमारे जितना प्यार पाओगे तो खुद को भी भूल जाओगे।

मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। वरना तो इस जमाने में वफा ढूंढना सिर्फ एक वहम।

लोग कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है, नहीं नहीं लोग तो धोखे में हैं, चांद मेरे महबूब जैसा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है निशिकंधा।

0: न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, हमने तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे बस तुझसे ही तो महकाए हैं।
1: नहीं नहीं

0: Exacto.
1: और तुमसे क्या कहूं कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो, कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो। तुम चाहे जहां भी रहो, मेरा साया तुम्हारे साथ हो।

खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में, खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में कि बस उम्र भर का साथ मिल जाए तेरा इन राहों में।

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में, मगर तेरी एक मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे लफ्ज कम पड़ जाते हैं।

दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, फिर आपसे दोबारा मिलूंगी 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर, जिसमें चलेंगे हुजरे दौर की बहुत ही बेहतरीन गीत सुनने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमरीका की एक

दोस्तों, गुजरे जमाने के गीत और संगीत में जो मधुरता थी वो आज के श्रोताओं को भी बरबस अपनी ओर खींचती है, और उसी को बरकरार रखते हुए हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और समय हुआ है 1:11:30। शुरुआत कर रही हूँ फिल्म मधुमती से। ये फिल्म 1958 में आई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

ऐसे पुराने गीतों को सुनकर यकीन बहुत अच्छा लगता है, और जब आजकल की युवा पीढ़ी भी इन गीतों को सुनती है, इनके रिमिक्स सुनते हैं, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल गीत ओरिजिनल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और ये फिल्म 1951 में आई थी। इसका नाम था आवारा। राज कपूर साहब की खासियत ये थी कि वह अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका खुद ही निभाते थे, और सबसे मजेदार बात ये रही कि उनके ही अपने परिवार के 3 सदस्यों ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर ने जज रघुनाथ की भूमिका निभाई, और सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया। और तो और, पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी और राज कपूर के दादाजी दीवान विश्वनाथ कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया। आगे बात करूंगी इस फिल्म ने कहां कहां सफलता पाई। पहले एक बहुत ही प्यारा गीत इसी फिल्म से।

अपने देश के अलावा ये फिल्म विदेशों में बहुत पॉपुलर हुई और कई जगह उसका गीत आज भी गाया जाता है, जिसे गाया मुकेश और लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। जी हाँ, आवारा हूँ। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मशहूर हुए। हसरत जयपुरी साहब ने भी कुछ गीत इसके लिखे। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों बात करते हैं फिल्म अलबेला की। ये फिल्म 1951 में आई थी। ये क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसका निर्देशन भगवान दादा ने किया और इसमें उन्होंने गीता बाली के साथ अभिनय भी किया है। ये फिल्म अपने यादगार गानों, एक संघर्षरत कलाकार के सपनों को साकार करने की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस फिल्म ने उस दौर में सबसे ज्यादा कमाई की थी। और जानते हैं एक जो गीत है इसका, शोला जो भड़के, ये एक ऐसी घटना बन गई थी इसकी कि जब ये गाना पर्दे पर आता था तो सिनेमा घर में दर्शक इसे बजते समय स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। और एक बड़ी रोचक जानकारी यह है कि भगवान दादा को सेट पर पेशेवर डांसर नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने स्टंटमैन और फाइटर से ही फिल्म के लिए नृत्य की कोरियोग्राफी कराई। नृत्य की इस अनोखी और मौलिक शैली ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है सी रामचंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

समय हुआ है 1:32 और 52 सेकंड। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ अंजू। अभी जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, ये फिल्म है दो बीघा जमीन, जो 1953 में प्रदर्शित हुई थी, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे ने और साथियों ने, संगीत दिया है सरल चौधरी ने।

दोस्तों बात करते हैं 1953 में आई फिल्म लड़की की। एम वी रमन द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा के एक बेहद रोमांटिक लोकप्रिय फिल्म थी और एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई और दर्शकों को खूब हंसाया था। इस फिल्म में वैसे तो मुख्य रूप से हीरो थे भारत भूषण, लेकिन किशोर कुमार ने सेकेंड लीड में इतनी ज़बरदस्त अपनी प्रतिभा दिखाई कि सबका दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि किशोर कुमार के अभिनय का जो शुरुआत मानी जाती है, पहली हिट फिल्म यही मानी जाती है। और दोस्तों ये फिल्म असल में दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म पेन की रीमेक थी। और दिलचस्प बात यह है कि तमिल मूल की जो फिल्म थी, हिंदी रीमेक में लड़की के नाम से ये फिल्म बनाई गई, तो दोनों में ही जो मुख्य अभिनेत्रियां थीं वैजयंती माला और अंजलि देवी, उन्होंने ही तमिल वर्जन में इस फिल्म में काम किया था। लेकिन तमिल वर्जन में वैजयंती माला और अंजलि देवी के ऑपोजिट थे जेमिनी गणेशन, और जबकि हिंदी में भारत भूषण और किशोर कुमार को लिया गया था। वैजयंती माला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में इस फिल्म में रानी मेहरा के नाम की एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में उनके शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग सुपरस्टार बनाया। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब बात करते हैं फिल्म दीदार की। ये फिल्म 1951 में ही प्रदर्शित हुई थी। नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक फिल्म दीदार। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म जब सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो दर्शक इतने भावुक हो जाते थे कि वो लोग रोने लगते थे वहीं पर ही। और इस फिल्म को बार बार देखने के लिए टिकट न मिलने पर बाहर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती थी। कलाकारों की बात करें तो बाल कलाकारों की शुरुआत जो हुई थी, परीक्षित सहनी साहब ने दिलीप कुमार साहब के बचपन का किरदार निभाया, वहीं मशहूर होस्ट और अभिनेत्री तबस्सुम ने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत आशा भोंसले और गीता दत्त की आवाज़ में।

अभी आपने फिल्म दीदार से एक गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम ने। महबूब खान साहब की एक फिल्म आई थी आन, 1952 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी। दिलीप साहब, प्रेमनाथ, निम्मी, हालांकि नादिरा जी को नरगिस जी की जगह रिप्लेस किया गया था, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। हालांकि इसके रिकॉर्ड को श्री 420 ने 3 साल बाद तोड़ा।

हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कि दुनिया भर में प्रदर्शित की गई। लंदन में भी इस फिल्म का एक प्रीमियर हुआ जिसमें महबूब खान साहब और उनकी पत्नी और अभिनेत्री निम्मी ने उसको अटेंड किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए।
1: क्या?
0: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
1: सपनों में देखा होगा।
0: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

दोस्तों हमारा मिलन भी होगा, लेकिन अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान से

2:10 हो चुके हैं और अब हो गए हैं 2:11:03। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू लेकर आई हूँ कार्यक्रम रात सुरमई। रहिए मेरे साथ इस घंटे और हम सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। शुरुआत दिल तो पागल है से, जिसे गाया है उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर ने।

मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, जो मुस्कुराए वो तो जान ले जाए और जो रुलाए वो दिल में घर कर जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

बदल जाए ये दुनिया पर हम ना बदलेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, अब तुम्हें ही चाहेंगे और उम्र भर चाहते रहेंगे।

ऐसी नजरों से न देखो कि मैं होश खो बैठूं, जो बात दिल में छुपी है वो सरेआम कह बैठूं। तुम्हारी इन आंखों में वो नशा है

पहली बार किसी की नजरों का ऐसा असर हुआ है कि ना होश है ना जमाने की कोई खबर है। जुबां खामोश है पर दिल दिल सब कुछ कह रहा है। ये प्यार का पहला नशा मेरी रूह में बह रहा है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगी हमराही लेकर आएंगी वंदना चुग। मुझे अनुमति दीजिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमर्सन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens, he called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation, and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the assembly today. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO informed them about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Political parties were also requested to cooperate with the election machinery involved in the SIR at different level, and they assured full cooperation, assistance, and active involvement during the SIR. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha notified the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, replacing MNREGA. An official spokesman said the VBG Ramji scheme will come into force across all notified rural areas of the Union Territory from July 1, 2026. The scheme guarantees 125 days of wage employment annually to every eligible rural household willing to undertake unskilled manual work. Employment is to be provided within 15 days of demand, failing which applicants will be entitled to unemployment allowance. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over parts of the northeastern region, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Telangana, coastal Karnataka, Konkan and Goa today. The Met Department has also predicted thunder squalls with wind over Madhya Maharashtra, Marathwada and West Madhya Pradesh today. US President Donald Trump has unveiled a new national resilience strategy aimed at ensuring that no adversary, crisis, or disruption can threaten America's core interests, placing national security, supply chains, infrastructure, and technology at the center of a broad government overhaul. Oman has announced the opening of a temporary maritime corridor through the strategically vital Strait of Hormuz. It marked a significant step toward restoring commercial shipping and easing a maritime crisis that has left thousands of seafarers stranded in the Gulf. The Omani government said the initiative was developed in coordination with the United Nations International Maritime Organization, or IMO, to facilitate the safe movement of vessels through the waterway following months of disruption linked to regional conflict. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे गीत हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

दोस्तों, दौर भले ही चला गया है, लेकिन हमारे जहन में ये गीत आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तान।

दोस्तों, जमाने की परवाह क्या करें, उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है। इसलिए आपके दुख सुख में जो साथ दे, आप उसी के साथ खुश रहिए और अपनों का ख्याल भी रखिए।

दोस्तों, कुछ गीतों को तो लगता है कि साथ ही गुनगुनाते रहें और ये बजते रहें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब ये गीत सुनने को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना पूर्णिमा फिल्म से। गीत को रचा था गुलजार ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सलील चौधरी का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और इस समय मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत।

जब आप किसी को देख लें तो वो आपकी आंखों में बस ही जाता है। घराना फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। शकील बदायूं की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अगला गीत आप सुनेंगे वो कौन थी, इस फिल्म से मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस फिल्म में हेलन बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ, राजा मेहंदी अली खान की रचना है और मदन मोहन का संगीत।

चोरी चोरी। इस फिल्म से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। शैलेंद्र की कलम से निकला गीत था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। सुन लेते हैं किशोर कुमार का हंसी से भरा हुआ अंदाज से ये गीत।

0: उम्मीद है आपको ये किशोर कुमार का हंसी भरा अंदाज जरूर पसंद आया होगा। और अब अगला गीत, दोस्तों जिसकी भी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसकी जिंदगी में भला बहारें क्यों नहीं आएंगी। तो अब सुन लेते हैं ये गीत और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं।
1: जा

दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जान जाएंगे, तो आप जान गए होंगे कि ये फिल्म का नाम लिया था मैंने कि उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तो आए दिन बहार के इस फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अगला गीत सूरज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले का गाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी बात समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ में आती, फिर आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे अपने वक्त पर, कोई बात नहीं। जब इसे या कहते हैं ना कि जब सयाना हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, तो इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले कार्यक्रम के साथ भी तो जुड़ी हुई हूँ। और अब आपके लिए कुछ ही पलों बाद होंगे समाचार, आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सेनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगला चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सेनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वर्ष 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens, he called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Subhendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the Assembly today. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO requested political parties to cooperate with the election machinery involved in the SIR at different level and they assured full cooperation, assistance and active involvement during the SIR. The Ministry of Civil Aviation has said that on 22nd of this month, an Air India flight from Delhi to Amritsar was instructed to hold during its approach to Amritsar due to a runway inspection post a bird strike incident. The ministry said that after the aircraft commenced its approach, it briefly entered Pakistani airspace during radar vectoring. It added that the event was coordinated with Pakistan ATC authorities. The ministry further said that the aircraft was subsequently diverted to Delhi and landed safely. It noted that interim action has been taken against concerned air traffic controller at Amritsar and the operating crew for non-reporting of the event. India and Russia are working to further enhance their bilateral trade with a target of reaching $100 billion by the year 2030. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that trade between the two countries is already showing a steady upward trend, currently standing at around $60 billion. He noted that both nations are committed to expanding economic cooperation across sectors. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over parts of the northeastern region, Jharkhand, Maharashtra, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Telangana, coastal Karnataka, Konkan and Goa today. The Met Department has also predicted thunder squalls with wind over Madhya Maharashtra, Marathwada and West Madhya Pradesh today. Indian women's doubles pair of Trisha Jole and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open Super 300 badminton tournament. The Indian duo defeated Spain's Paula Lopez and Lucia Rodriguez in the opening round. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग FM 100.1 MHz पर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भाभी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। दोस्तों, पतंग की तरह ही हमारे विचार होते हैं, जो सकारात्मक हो तो ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि आप भी हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहें।

मधुमती फिल्म से ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने। अगला गीत झनक झनक पायल पाजी फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ हसरत जयपुरी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और गीतों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में आपने ये गीत सुना राम और श्याम फिल्म से। दोस्तों, बहुत समय हो जाए तो आप जब अपनों से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप बताइए सोचकर। यही कहते हैं ना, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आपने ये गीत सुना। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, जब भी अपने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना। और मौसम का अगर हाल बदल जाए तो कितना अच्छा हो, और फिर आपको उस मौसम में झूमना तो अच्छा लगेगा।

उजाला फिल्म से ये गीत आपने सुना, मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसल जयपुरी ने गीत को रचा था और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कहना पड़ेगा कि अगर आपके विचारों का तालमेल अपनों से बैठ जाए तो जिंदगी जीने का मजा और भी दुगना हो जाता है।

हमारे दोस्त फिल्म का नाम तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। भरत व्यास ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत आप सुनेंगे अमरदीप फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और चीतलकार रामचंद्र का संगीत।

ये सुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ आपने गीत सुना छोटी सी बात फिल्म से। योगेश का गाया गीत था और सलील चौधरी का संगीत अगला गीत आपको सुनवा रहे हूँ दिल देके देखो फिल्म से, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत।

दोस्तों, वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। और हम उस दायरे में रहकर अगर नियम बनाकर काम करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगला गीत कन्हैया फिल्म से, मुकेश।

0: होगा नहीं।
1: मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The projects aimed at boosting economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare were reviewed with a focus on timelines, inter-agency coordination and speedy resolution of pending issues. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the representatives of various political parties, including BJP, Aam Aadmi Party and Indian National Congress, attended the meeting. It added that the CEO informed them about the main objective of the SIR. No eligible citizen is left out, while no ineligible person is included in the electoral roll. Political parties were briefed also about the important activities to be undertaken during enumeration phase. Samvidhan Hatya Devas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, then-President Fakhruddin Ali Ahmed proclaimed a national emergency under Article 352 of the Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The Ministry of Civil Aviation has said that on 22nd of this month, an Air India flight from Delhi to Amritsar was instructed to hold during its approach to Amritsar due to a runway inspection post a bird strike incident. The ministry said that after the aircraft commenced its approach, it briefly entered Pakistani airspace during radar vectoring. It added that the event was coordinated with Pakistan ATC authorities. The ministry further said that the aircraft was subsequently diverted to Delhi and landed safely. International Atomic Energy Agency has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the US. Talking to reporters in Japan, Director General of IAEA, Rafael Grossi, said the inspections will indeed take place and they will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under IAEA supervision. Zimbabwe's Senate has approved constitutional amendments that would remove direct presidential elections, delay the next one and extend the tenure of the country's 83-year-old leader, whose signature is the final step for them to become law. 75 senators voted in favor of the bill that would postpone elections scheduled for 2028 to 2030 and extend President Emmerson Mnangagwa's term by 2 years. Four senators opposed the measure, with some lawmakers from the fractured opposition joining ruling party colleagues in backing the changes. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur-led Women in Blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. Bangladesh have also won 2 matches, but they are placed 4th due to lower net run rate. India began their T20 World Cup campaign against arch rivals Pakistan with a dominant 64-run victory, followed by another 95-run win over Netherlands. However, their winning streak got broken in last match against South Africa, where they faced a 6-wicket defeat. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों भोर सुहानी कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए गीतों से वातावरण को महकाते हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी, जी हाँ, मैं हूँ वंदना चुग।

सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना द बर्निंग ट्रेन से। साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, जो भी हमें मिलता है उसमें उसी की ही असीम कृपा होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन उसकी बख्शीश हमें सही राह और सुकून देती है।